0: चरण रख करी आओ पैर जगन कटे बेकार पैर धरती जमी पार पैर चंद्र है सिर पार पैर राजा दरबार पैर सूर्य पैर चंद्र को करोड़ी चंद्रनाथ पैर सिद्ध सुनार पैर जाने आकाश पैर ज्योत मामल सूर पैर जावे जावे मोर चले पौन के सिद्धे नानक ने पौ निरंकार सचे अल्लाह पैदा
1: नानक ने पौ निरंकार होते तेरा अनुवाद कितने कन कहानियां कितने भेद विचार।

0: मल रहने पावन पानी में संतचन सूरज उतार सभी धरती मल तन पर तन सब जार नाम सह ज्ञान में मुनी भय गया जम काल मुदा पहला
1: वाइन चले न चंपूर पैर लाइन फिर सिर उड़ो रामा चटे पाए वे खेलो कसे कर जाए रोटियों कारण पूरे ताला पिछड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपाव निरंकार सच नाम जाकर किया सर्व जहान सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ तिन्ही रंजना मचाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नगर करी नगरी कर्म लगाए पार बोलो चखा चक्की चक थल मारोले बहुत आनंद है लाटू मात आनी आन गा पंखी पौंगिया लेना साथ सुए चाड़ को आइए जंत नानक पौंगिया करतना आयत है
2: अंदर मन को आए सुए पैके तुम ते सब कुए नाच नाच से चले सरोट ना जाए सदना होए

0: पांडायतमली होता अच्छा न हो बसी गुरुद्वारे धोए अच्छा होए सी
1: मैंने अच्छे का विचार आप वरताए सी
0: तन कर मटकी मन माहि बलोई इस मटकी में सब संजोई इस मटकी

एक कर्म छड़ के तो करोड़ा कर्म कर। भुखिया नु रोटी खुआ, जल छका, सेवा कर। पातशाह कहंदे ने तू एक कर्म छड़ के कई कर्म करेगा, जे नाम हिरदे विच नहीं वसिया नरकां दा बुआ जरूर वेखना पवेगा।

तू लिख सकते, तेरे हाथ बहुत कुछ है। तू अपना फर्ज निभा, अगला अपने आप फर्ज समझेगा। बच्चे दा कम है रोना, मां दा कम है रोना, सुन के उन्हों दूध देना। इसलिए मिलेगा उन्होंने जेड़े मंगणगे, जिन्होंने आप देवेगा। देवेगा उन्होंने जेड़े मंगणगे, जिन्होंने लोड़ ही नहीं, उन्होंने की मिलने।

0: सत्यता जो मैं सच्चे तेरे कर सच्चे ब्राह्मण सच्चे तेरे ओ सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरे कर्म सच्चा निशान सच्चे तो जाते ला करू सच्चे शब्दान सच्चे सब
1: सच्ची तेरी से सच्ची सलाह सच्ची तेरी खुद सच्चे पाशा ना सच्चे सच्ची जो मर्ज में सो कच कच माला पहला
0: बड़ी बड़ी बड़ा बताला बड़ी बड़ा जैसा चिन्हो बड़ी बड़ा जने चलता बड़ी बड़ा जाने वाला बड़ी बड़े कुछ सब पाओ बड़ी बड़ा जो पूछना दात बड़ी बड़ा जाया पे आप नान करना कथनी जाए खींचा करना सर्व जाए महला दूजा ए जग सच्चे किया कोठड़ी सच्चे का विजवास इतना उसमाइल इतना हुक्म कर बनास इतना पानी कर ले इतना माया सिनवास एम भी आप ने जब बेच देने यार नाच तो गुरु मुख जानी जान को आप करे पर गत मोड़े।

मूर फल देख मुझे किसने के प्यार तर्म तर्म करेगा वावे मंगल मुखद्वार जति जावे दुख न जाने छठ बह कर बार सबको पूरा करोगे कटना बुझा के बस परवाना पीछे पाई गया था नानक तो ले जा पे बस स्वच्छ नानक।

गौ ब्राह्मण को कुरला वो गोबर तरण जाय तो टिका तेज माली तन में जगाई अंतर पूजा बड़े कि बस निम्बू का पाई छोड़ी लिपखंडा नाम ले जाता है मान खाने करे निवास।

0: सत्र का जो बोला पहला पहले सुता पर सुते बैठा सुते के कुछ बोला मिट जाए सुता और कुछ वेला का बना करूं होते जाए सत्या किसे लगा दो अंदेवता पानी देवता संत देवता लू पनीमा पाए प्रीत सांगो अपार
1: पापी सोतन का दिया तो कब आये तेरे नाम फिर बिना मेरा रखा नान के बजानिए
0: पंड जबी है पंड लिमी है पंड मंगल रहा पंडो में दोस्त के पंडो चले रहा पंड मुआ पंड पल गए पंड को बना मंदा आखिए जिस मेरा जान
1: पंडो ही

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, धुन आप वजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तपतापे।

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत

मत भूले कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे कहे मोन आवे कथों ताहे कैसे कहूं नाद है के भली भांत बाजे कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तू फिरत भीख, कहूं महादान होय के मांगो धन देत हो।

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देते हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेते हो। कतहूँ विचार अविचार को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के नकेत हो।

कहूं देव बानी, कहूं शारदा भवानी, कहूं मंगला मेड़ानी, कहूं श्याम, कहूं सेतु हो।

जी उठे बड़ा घाबरे है ये की होया चंगा भला घोड़ा सी डिगदिया ही मर गए हुण की करा फिर उसने की कीता मोए घोड़े तो काशी ला के सिर ते रख एदा नाम सी करोड़िया सी करोड़ोपति माया दे कोल बड़ी सी पर शूम बड़ा शूम दी अवस्था किसी ने बयान कीती है किरपन पूछे शूम से तुम क्यों भया हैरान शूम नू किसी ने पूछया भी हैरान क्यों है अज जां कुछ तेरा तन गया जां कुछ किया दान शूम कहन लगा नहीं ना कुछ मेरा तन गया ना मैं किया दान पर एक दान करेंदे नू वेख के निकल गया मेरे प्राण ताको सी गुरुद्वारे वास्ते उगराई भी होती सी मैं चला गया कोई $500 रुपया देवे कोई हजार चूप कह लगा मैं वेख वेख ही जा रहा आप न दे चुल्लू भर पानी तह मिले जे गंगा ऐसे भी इंसान तुम दुनिया चल आप चंगाई पले नहीं बनते चंगे काम करने वाले तो लुप्ता ची नहीं करते करोड़ी वाली शूम काफी सिरते चुक ली ते वापस मुड़ गए मरदाने ने दूरों वेख्या मरदाना उठ के खड़ा हजूर कहन लगे मरदाने की गल है काला पै गए आख्याओ वेखो जेने मैनू ठुडा मारिया सी ते तुहानू पुराइया कहा सी आ रहे है पता नहीं घोड़ा किधर गया काठी सिर ते चुकी आउन अदू कहन लगे मरदाने आउन दे मरदाने ने कहा महाराज अगे मैं तुहाडा हुक्म मने ते हुण तुसी मेरी बेनती मनो मरदाने कहो की कहना है मरदाने ने कहा महाराज ए है कला ते आपां सुख नाल हां तिन जे तुसी ते भाई बाला दियां कदे बाहां फड़ लो ना तो मैं रवाब दिया दो ठोकरा ने सिर च मार के बदला ही ला लू आखो श्री भाई पर हजूर कह लगे ना मरदाने रवाब मारने वास्ते रवाब दे भी शब्द का तीर बन मरदाने मार कोई तीर अणियाला आ गया पंछी केरे मरदाने ने क्या मारा जे ए गल है ना आप कृपा करो की पता मेरा तीर खता कर जाए आप बख्श सच मरदाने फिर रवाब च मरदाने ने रवाब चुकी रवाब दियां तारां ते मरदाने दियां कोमल कोमल उंगलां चलियां कोई इलाही नाम चलिए ते इधरों मेरे धन गुरु नानक पातशाह जी का मिठा गला खुलिया करोड़िया नेड़े आ चुका सी साहबा ने मुखातब होके तकिया ते फिर प्यार नाल इस अद्भुत की है।

रो लिया रो रो के मेरे तन गुरु नानक पातशाह ने चरणा रुप हो पातशाह बस अदूर कहन लगे मरदानिया बख्शीए मरदाने ने कहा महाराज अगे मेनू पुछ के बख्श दो ये तो तुहाडा बिरद है जो शरण आवे तो तंस लावे ए बिरद सहनी सकदा तो हजूर ने अवे दृष्टि नाल तकिया ते किया करोड़िए फिर जप सतनाम संसार रोगी नाम करोड़िए नाम जपे नाम जपेगा तेरा मन पवित्र नाले बाणी पढ़िया नाले सत्संग भी करिया करते करोड़िए तेन निरंकार ने माया दिती है दान पुण्य को जो माया भी कर सत्य हूं करोड़िया सेठ गल च पला पा के कहता है पातशाह एक बेनती मेरी करवा केड़ी पातशाह नाल ही मेरा पिंड हूं मेरे घर चल मैं थोड़ी सेवा तुहानू प्रसाद छकावा दुध पिलावा अदूर कहन लगे क्यों मरदाने चलिए मरदाने ने कहा महाराज ये भी कोई पूछने वाली गल खुश नहीं चलो हूं तुहाडा सिख बन गया कौड़िया अदूर कहन लगे मरदानिया अजे सिख नहीं बने पातशाह किस तरह हजूर कहन लगे मरदानिया अजे नु सिखी दिती सिखी की है हुकुम ते जे हुकुम मनेगा तो फिर ही साडा सिख सिखी गल्ला भी सिखी गल्ला दी सिखी कमजोर सिखी का स्वरूप की है उस वाहिगुरु का हुक्म हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का महल करोड़िए जो तेनू असी उपदेश दिता है ओनू कमा जे तू कमाएगा फिर अरदास करी असी आवांगे तेरे घर प्रसाद भी छकांगे ते आके वाहिगुरु दे नाम का पवित्र जो अमृत है ओदा प्रवाह और करोड़िए चरणा ते कहते पातशाह मैं गरीब तेरी बख्शिश कर दिती है हजूर कहन लगे करोड़िया बख्शिश मेरे वाहिगुरु की जिस वेले बख्शिश का समा आंदा है फिर जिहड़ा संभाल लैंदा है वह पाता अज करोड़िए ते बख्शिश होई तुहाडे ते भी गुरु की बख्शिश ते बख्शिश वाला समा उजले बख्शिश तो सदीव ही है बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन करते सन उस वाहिगुरु की सदा ही मेहर है पर उस मेहर को संभाल लेना यह वड्डी तो आप जिन्हों के भागा विचे बख्श दो वेले आके आप कीर्त नहीं जुड़ी जिन्हों से गुरु की कई आने नहीं कई नावे पाई जाते पर कई ऐसे प्रेमी भी हैं जिन्होंने किसी कीर्त च नागा नहीं पाया जो कीर्तन च नागा नहीं पाएगा तो गुरु नानक की बख्शिश ही नागा नहीं पाएगा करोड़िया ये मालक की दात ये जोर की चीज नहीं न्यूयॉर्क तू टेलीफोन आया है कदों वापस आ रहे हो छेती आ जाओ किसी पासे उड़ीक है तो कई गुरु प्यारे थोड़े वर्गे माई भाई कीर्तन का अमृत पी तो यह दात गुरु की अपनी है हजू कह लगे मरदानिया रवाब चुक ये शब्द ही अखीली पचपन मरदानिया ने रवाब चुकया तो बाबे ने सोने गले चब्दता की किया और सारे पढ़िए कीर्तन की समाप्ति करिए।

0: सही सही जो गुरु का उपदेश साहबा ने करोड़िए से बख्श और असी भी इस उपदेश को हृदय च बसाइए कमाई करिए जो साडा भी जीवन सफल फिर सानू सदा वास्ते की मिलेगा साडा ये लोग सुखी है पर लोग सुहे ने हर पल आते मिले और कैरी सात संगत जिथे होस्टल दिया संगत गुरुद्वारा साहब के प्रबंधा के उद्यम नाल दास रोज आप जी के दर्शन करता है ते आप शब्द द्वारा गुरु नाल तो अज गुरु दरोवर साहेब अमरीकन सिंह ये गुरु प्यारा जत्था ये भी इतने ये भी साढ़े वीर भाई गुरु नानक पिता है एक पिता एक उसके पारक तू मेरा गुरु जो गुरु नानक का सिख गुरु की मर्यादा विच रहेगा भाई उसे कोई विथ नहीं है सारे बापू के बच्चे हैं तो गुरु प्यारे भी आए हैं तो शब्द एक शब्द की हाजरी वो लगवाण गए उस तो उपरंत कीर्तन की समाप्ति अमृत वेले का प्रोग्राम भी है कल शाम जिस तरह रूटीन चल रही है उसी तरह कीर्तन धन गुरु नानक पातशाह आप जी भी महान महान बख्शिश द्वारा बरखुरदार गुरमुख प्यारे गुरसिख आप जी ने बख्शे खजाने उसों कीर्तन की भेद शब्द आदर कर दे डालर अरदास कराने मेरे अंतर जाने गुरु नानक जी आप अपने गुरसिखा बच्चिया सिखी जीवन सदाचार दिया कला बख्शो आओ फतेह बुलाओ प्यार
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।

अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा।

ऐ मन लाजुम रसा अवरा पै के मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई जो मन दी बिरथा है ये वागुरु अगे आख किसी मुरुख कोल ना को। ये बंदा मन दी बिरथा मन दी गल लोकां पास करदा है, मन लोकां पास फरोलदा है। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा वो तेनू भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वागुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे, वागुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास तां सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है गुरु नू आ। महाराज वचन कर दिए ने जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत कडास। ते अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वागुरु अगे बेनती कर जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नू दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच

ताकिस पयास सुनाए कहने कथन ना पीजे गोविंद हर भावे पैजल खाई अवर ओट में सगली देखी अवर ओट

0: सगल्या पौलक्या सिरलेख नानक निरपाओ निरंकार सच एक पहला पहला
1: नानक निरपाओ निरंकार और कित राम रोमान कित क्या कर्ण कर्मणीय कित बेचार कित हरे चरण से गमन पूरे ताल बाजारी बाजार माइक ले बाजार गावे राजे राणियों बोले

0: ज्ञान को कैसो जनो इत संयम दुख जाए।
1: औड़ी सेव की तीसर दुख है जिनी सचो सझाय। उन्हें मंदे पैन रखियो कर सुकृत रम कमाया। उन्हें दुनिया तोड़े बंदर ना अनपानी थोड़ा खाया। तुम बख्शी सी अगला नित वह कड़ी सवाया। बड़ी आई

0: और सत्संग जी जो बच्ची का जन्मदिन है, बच्ची अविनाश कौर, गुरु उस नूं उम्र दराज करे, विद्या दान बख्शे और अपने माता प्यो
1: इन्हें ना समझो।

आवाज से दैवत सुर उचरी है। दादर मैंने डड्डू जो डड्डू बोलता है ते दास सुर लगता है। दादर की आवाज से दैवत सुर उचरी है। माते गज राजन की रंगून से निषाद लीनो। गज राज हाथी रंगून मैंने चीख जो जंगल दे हाथी चीखता है ते नी सुर लगती है। माते गज राजन की रंगून से निषाद लीनो इतनी निर्वाण जान सातों सुर कही है। विद्वाना ने यह सत सुर इस तरह कही हैं। तो सासन जी ये संगीत जो है इथों के बच्चे सारे बड़ा कीर्तन करते हैं कीर्तन सीखते हैं। तो आप जी का सारे का फर्ज है इतने जो कीर्तन की लहर परंपरा चली है बहुत ही आनंद आता है जो बच्चे कीर्तन सीखते हैं क्लासीकल कीर्तन के मन जोड़ते हैं। ये तुहाडा बहुत वड्डा उपराला है माता पिता का जो बच्चों कीर्तन के नाल जोड़ रहे। आओ सिख संगतां वालों गुरु कलगीधर पातशाह जी के अमृत के बारे रहत के बारे हुक्म होया सी कि दो शब्द रहत के बारे अमृत के बारे जरूर लाने।